0: दादी
1: पुरान का मोह हाल हुआ था
0: रजेंद्र चले गया है
1: वो पता नहीं चला सारे वन
0: ए
1: इसा अब तो ला सी है जीवा
0: तो ला सी क्या है सी बा मगुनये ए ए क्या है सी बा
1: तो सा जा मसिच का
0: बन्ना वा बुआ का हो ले मचांगा ए
1: बन्ना हाय तो यहां ना खा
0: थैंक यू दादी
1: ए इगिरो मन्ना
0: ga tsoga mo lokoti